गुरुदेव जी सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है, इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी ओहो गलत

this is what we have done. ऐसी किया है. स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहाट किसी ही पे सगले लर लर मुआ, बाद बाद विवाद, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज च ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा, ईरखा मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता. तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी, प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने हैं. ए तेतो हिसाब, तेतो ए सवाल, ए तेतो लेखा पुछया जाना है. कहंदे हन

आखी केरे माठ के पल पल गई विहाय, अखां दी पलक झमक दे विच ही जिंदगी जो है वो साढ़े हथों चली जाती है। आखी केरे माट के पल पल गई विहाय, मन जंजाल न छोड़े जम दिया दमामा आए। मन जंजाल नहीं छड़दा, गणत गणिए सहसे जिए, क्यों सुख पावे दुए तीए। साड़ी हालत है गणत गणिए, हमेशा बस गिनतियां दे ही चक्कर, गिनतियां दे ही चक्कर। तो कहते जो गिनती का ही चक्कर है, कदे गिनती बढ़ जाती है, कदे गिनती घट जाती है। गिनती के वधन घटन के नाल जो इन्फ्लुएंस्ड होंगे हैं, अफेक्टेड होंगे हैं, वह सुखी किमें रह सकते हैं। गिनती ने तो वधना घटना ही है। क्यों सुख पावे दुए तीए, ए दो तीन चार पांच आदि जो कि गिनती है, जो नंबरस के विच रहिंदा है, नंबरस के विच रहण वाला तो हमेशा डर दे विच ही रहेगा। सुखी किमें रह सकता है, वो सुखी नहीं रह सकता। तो गुरु बाबा जी साडे उत्ते सवाल करते हैं, असी अपने अंदर अज फैसला लेना है, कुछ अपने अंदर सोचना है कि पिछली तो गई है गुजर, अगां दा जो वक्त है। महाराज जी कहते हैं अजू कछ बिखरियो नहीं, हाले भी कुछ नहीं बिखरिया। जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, वो सानू डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहते। यानी कि तुहाडे लई डोरस क्लोज हो गई हैं, नहीं दरवाजे बंद नहीं हुए। जिस दिन भी उसकी शरण लैण की जो अपने अंदर इच्छा दृढ़ करके धारण कर लोगे अते कमिट कर लोगे कि बाकी दा जीवन जो है ओ, मेरी सब तो प्राइम प्रायोरिटी जो है वो उस काम लई है जिस काम लई ये मेनू शरीर मिलिया है, तो बाकी सब चीजा सैकेंडरी हैं। गुरु की बख्शिश हमेशा ही साढ़े उत्ते जो है वह मेहरबान। आओ इस पंक्ति में एक दफा फिर गाइए, फिर असीं अगां चलांगे।

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए, उसनू हासिल करिए, ओ सुनिए कि ए वस्तु की है, शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी चों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ, जिहड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, सुते किसी का जोर नहीं है, यह दुर्लभ चीज है। दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साडे सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साडे पास कुछ भी नहीं है, इस तरह फील करते रहने। हालांकि साडे पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं नहीं मिलता जिसका वह साडे पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शै होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि रब की कामणी है, रब की औरत है, रब की पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसै जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नू जे पिर तो वाहिगुरु तो दूर ले जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नू गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नू डोब दोगे, ये कुमला जाएगी। क्योंकि पिर तो दूर ले जाओ पत्नी नू तो वह कुमला जाएगी, उदास हो जाएगी, वह मर जाएगी। इस शरीर नू वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ, वह इसकी जिंद जान है, यह मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। यह रब की कामणी है, इसनू रब दे नेड़े रखो, इसनू उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखा सी, यह मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसी मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां, वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर का सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे ले भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है, कहिंदे ओ सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक घोड़ी है, शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो कोड़ी है वो सवार दे उत्ते सवार होई पई है, वो सवार दा आखा नहीं मनदी है, कहिंदे इस दे उत्ते सवार हो वो भाव, इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जाने हैं, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवा आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारिया जूनिया तो कहिंदे पानी प्रवाया जा सकता है, यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वो है किथे, वो किथे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान खजाना वो दौलत वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हन कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है आच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत आच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरलल्ड। कहंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हन कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलदी। अच्छा महाराज होर की है? कहंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्मो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तों बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने होए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है, अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है, तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ कराएंगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानूं ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है वो इस दे विच है, अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन्स दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है, ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक वो पहुंचा ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे वो होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उसदियां विधियां की हैं, उस कमल नू खिलाण दे वास्ते कि वह खिले उसदियां की रिक्वायरमेंट सन, ये कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नू असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नू जान सकीए, ते शरीर दे अंदर जो है उसनू जान जाइए, ते उसका रस्ता समझ लईए पे उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफल हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नू समझ लईए और शरीर नू समझन तो बाद इसनू सानू साधना पैना है, इसनू सानू फिर पढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नू साधना पैना है, इस उते बहुत सारा काम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है, वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नू समझ लवांगे, इस नू साधना किवें है वो समझ लवांगे, इस शरीर दे अंदर की है वो समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वो सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नू एक्सप्लोर कर लवांगे, अते जो अंदर साडे वस्तु नू पाउण नू महाराज ने कहा है उसनू असीं पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नू गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

जयश्री जयंत श्री आदि के नाम नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित जयत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग में शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जयत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नू वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नू मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। आरोह विच रिश्वत धैवत वर्जित हैं। इसका वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। यह राग दिन के चौथे पहर गाया जाता है। राग जैतसरी विच दो शब्दों का कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। इसन गा रहे हैं बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द की तुक है कोई जन हर सियो देव है जोर। दूजा शब्द गुरु रामदास जी की रचना हर हर सिमरो अगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सिंह देव है।

शिवा का मतलब शिव जी नहीं है। शिव शिव करते जोर नारे आवे बलद चढ़े डोरू चमकावे वह बलद की जून च पैंदा है। मां माई की पूजा करे नर से नार हो तरे वह नार की जून च पैंदा है। तू कही आद तो आनी मुक्की बरिया का छपानी इस वास्ते हिंदू अन्ना तुरकू काला दोवा ते ज्ञानी सियाणा जेड़ा एक तो बिना दूजे मन ला ही नहीं। शिवा का मतलब शिव जी नहीं, शिवा का मतलब पावन मेनू वर दो पावन। शिवा मेरे शुभ शुभ वर मेनू बख्शो। केड़ा शुभ कर्म।

जन कब होना हारे ताल जो जाने पाशा ताल जो जाने पाशा ते जन कब होना हारे।

पर मोहे है, देश सेवा पर मोहे है, सब सर मन के कब हूं न करो। ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिखाओ अपने ही मन को लाल जहां गुटा उतरे, और सिखाओ अपने ही मन को लाल जहां गुटा उतरे।

आन को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आगे भले इन्हीं को दियो, आगे भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो सभी को, मुद्रे में मरते तरते सिर लो धन है सभी के लिए को, मुद्रे में मनते तनते सिर लो धन है सभी इन्हीं जब्द जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे अग आग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे, इन्हीं के प्रसाद को विद्या रही, इन्हीं के प्रसाद सब इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे।

जन्म सवार दरगे सच्चे दरगा जाए सच्चा पिंड मल्या सच्ची दरगा जाए सच्चा पिंड मल्या सच्ची दरगा जाए सच्चा पिंड मल्या जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका।

करुणालय है अर्थालय है खल खंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणी।

सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, होर बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां कहिंदे मिठियां समझ के उन्होंने खाया पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्हां दा रिजल्ट जो है अखीर दे विच जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे विच कुड़त्तन निकली, शरीर ने ही वह बीजिया पर शरीर नूं ही वह भोगना पै गया। भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं। भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हन, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच ग्रिस्तियां नू खास करके ग्रिस्तियां नू इस समझाया है कि जे तुसी ग्रिस्ती हो तो इसका अर्थ ए नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी ग्रिस्ती हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां ग्रिस्ती लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो, अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है, असी ग्रिस्ती हाँ। हुण गुरु साहब ग्रिस्ती किस नूं कहिंदे हन ये नहीं असी सुनिया, ये नहीं असी सुने, असी सिर्फ इन्ना ही सुनिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, ऐ सुनिया, ठीक है ना कि गुरु नानक साहब महाराज ने ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे ग्रिस्त धर्म नूं प्रवान किया ये दसना भी मुश्किल है, इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, तो सानू शायद किसी ने दसिया भी ना हो। गुरु बाबा जी दसते हैं कि ए ग्रिस्ती जे तू सोचे कि ग्रिस्ती होने के नाल तेनू एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस्ट सन उन्हां नूं माणी जा, तेनू कोई तपस्या करन दी कंट्रोल करन दी अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू ग्रिस्ती है इस करके यू आर अलाउड। वे कहिंदे ऐसी गल नहीं, हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी, कहिंदे हन

0: ऐ है गृहस्थी। इसके अर्थ सुनो,
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृहस्थी वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स दे उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वो इन्हों इंद्रिया दे रसां दा गुलाम न रहे। क्योंकि जो इंद्रिया दे रसां दा ही गुलाम रह गया, वह शरीर दे ही तल ते रह गया, वह शरीर तो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगां इवॉल्व नहीं होया, उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा। वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, दोबारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लेवल ते अपनी लाइफ नूं एंड करता है, दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं, सो गृही ओ गृहस्थी है, जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे, अपनिया इना इंद्रिया दे तमाम रसा नूं मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इना नूं जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दिया, अपने बिहेवियर दिया तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नूं, अपने बिहेवियर नूं, अपने लाइफ स्टाइल नूं तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ये तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नूं निर्मल बनाउण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नूं घटावे, अपनी नीड्स नूं अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नूं देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही है। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है, जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनियां इंद्रियां नूं कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नूं ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे
1: ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਇਸਨੂੰ।

फिर सच्चे थे सदा सुहागन। कहते एक काया जदों तक फिर इस दे नाल है ये सुहागण है, जदों तक सुहागण है इसनू कोई आंच नहीं आ सकती, इसनू कोई गम नहीं आ सकता, कोई दुख नहीं आ सकता, उदासी नहीं आ सकती, क्योंकि फिर जो नाल पति नाल। पर कहिंदे अगर अपने जीवन दे विच इस काया रूपी कामणी नू इस दे पिर नालों विच छोड़ दोगे, इस दे पिर तो दूर ले जाओगे, ये कहिंदे कुमला कुमला के मर जाएगी, ये उस विछोड़े नू सहार नहीं सकेगी, एक कुमला जाएगी, इसकी खूबसूरती टल जाएगी, ये बीमार पड़ जाएगी, ये उदास हो जाएगी, अते फिर ये पुकारेगी किथे गया मेरा साजन, किथे लै गए ये लोग मैनू, साजन देश विदेशी अड़े सा नेड़े देन दी, सार संभाले तिन सजना मुंद नैण परहिंदी, ये मुंद ये जीव स्त्री ये रब दी कामणी इस दी अखां च फिर अथरू आणगे, ये फिर रोएगी, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, उस पति नू मिलन दे वास्ते उस दे गुणा नू याद करदी है, अखां च इस दे अथरू हन, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिला प्यारे, किवें अपने प्यारे नू वापस मिला, क्योंकि इसनू भी तृप्ति नहीं आंदी, मुंद नैण परहिंदी गुण सारेंदी, क्यों प्रभ मिला प्यारे, मार्ग पंथ ना जाणो बिखड़ा, क्यों पाइए प्रपारे, ना मैनू रस्ते दा पता है, ना पंथ दा पता है, रस्ते दीआं कठिनाइयां बड़ियां हन। ते कहिंदे हन इस जो सिमली नू देण दा अर्थ ए है कि ए जो शरीर है असीं इसनू ए समझना है कि ए रब दी औरत है और इस दा पति इस दे अंदर है, अगर कोई इस शरीर नू इस दे पति तो अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर करेगा ते उस दे जीवन दे विच उदासी आएगी, विछोड़ा आएगा, गम आएगा, डिप्रेशन आएगा, दुख आएगा, अते रोना ही रोना आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि औरत नू उसके पति तो विछोड़ दिता जाए तो और की हुंदा है, कहिंदे ओह कुमड़ा आ जाएगी, वह मर जाएगी, उस तो बिना उसका जो जीवन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो तीसरा नुक्ता अज आप जी की सेवा दे विच रख्या है कि ए अकाल पुरख वाहिगुरु की कामणी है, अकाल पुरख वाहिगुरु की ए पत्नी है, ए उसकी औरत है, तो साडा अभ्यास की होना चाहिए है कि असी अपने इस तन नू जो कि रब की कामणी है कि ओ वस्तुआं दईए जड़ियां इस नू वाहिगुरु तो दूर ले जान, ओ वस्तुआं दईए जो इस नू गंदगी दे नाल भर देन, ओ वस्तुआं दईए जो इसकी बुद्धि नू भ्रष्ट कर देन, ओ वस्तुआं दईए जो इसकी बुद्धि दे विच बेहोशी लियान, इस नू असीं बेहोश करिए, ऐसा गुनाह फिर माफ कित्ते कीता जाएगा, फिर साडा फर्ज बनता है ये रब की औरत है इसनू जिस तरह रब ने बनाया उसे तरह ही असी रख के संवार के शिंगार के इसनू उसकी दुल्हन बना के रखिए, उस दे विच कोई ऑल्ट्रेशन करन दी सानू इजाजत नहीं है, क्योंकि डिजाइन जो इसका है जिस तरह भी उसने चाहा है उसने आप बनाया है, ये उसकी औरत अते हमेशा इसनू उस वातावरण दे विच रखिए ताकि एक काया रूपी औरत अपने पति दे पिर दे नेड़े रहे, वो वातावरण की है वो है सत्संग, वध तो वध सत्संग हो, पर जितना असी इसनू सत्संग तो दूर ले जांगे उतना ही है अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर चली जाएगी, और जितनी दूर चली जाएगी उतनी ऐसा भी हो जाता है कि एक काया बहुत ही दूर गई गई फिर पिर नू भी भुलना शुरू कर जाती है, और जो अपने पिर नू ही भुल जाए पति नू ही भुल जाए उसका हश्र की होता है, बहुत भयानक हश्र होता है। सो एक एक नुक्ता इतना गहरा है कि गुरु साहब आखते हैं एक काया ये शरीर जो तुहाड़े पास है तुसी नहीं समझे ये वस्तु की है, ये रब दी
ਕਾਮਣੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਦਾ, ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਸ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਫੂਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

जो गाएगा जो सुनेगा चित ला के। कबीर साहब फरमान करदे ने किसे किस्म दा शंका नहीं, सानू तो शंका बनी है ना, अज तक शंका बनी है, अज तक बाणी विचों रब नजर नहीं आया, क्योंकि शंका बनी हुई है। ते शंका जड़ी है डोब दिंदी है, ते कबीर साहब फरमान करदे ने कोई गावे को सुने हरनामा चित लाए, कोई इस नु चित ला के गा लवे, कोई इस नु चित ला के सुन लवे, ते फिर पता की हुंदा, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए, अंत परम गति दी प्राप्ति हो जांदी है। जेड़ा इस बाणी नु चित ला के सुने, जेड़ा इस बाणी नु चित ला के गावे, उस दी परम गति हो जांदी है, मुक्त हो जांदा है, संसार दे विचों बंधना तो रहत हो जांदा है, जन्म मरण तो रहत हो जांदा है। ते कबीर साहब ने ए भी फुरमान कीता नाल नाल भी दुनिया दे लोगो इस नु गीत ना जाण्यो, बाणी नु गीत ना जाण्यो, ए ब्रह्म दी विचार है, ए ब्रह्म दी विचार है। ते असी ते इस बाणी नु गीत ही सुन लिया, गीत ही समझ लिया। कन्ना नू आवाज चंगी लगनी चाहिदी है, दिल शीरवी आवाज होवे, दिल कश आवाज होवे, दिल पजीर आवाज होवे, जेड़ी दिल दे उपर असर पांदी चलदी जाए। ते फिर साडे कन्ना नू चंगी लगदी जांदी है, असी फिर उस दी ट्यून नू, असी फिर उस दी मधुर धुन नू सुन सुन कई मोहित हुंदे जाने हैं, पर उस दी विचार नहीं करदे भी एक गांधी की पई है, कहंदी की पई है, की कह रही है, नहीं सुनिया, अज तक नहीं सुनिया। साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज जी की कृपा दे नाल बड़ा समा हो गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नू स्थापित कीतिया होया, ते बड़े बड़े महापुरख आए संसार दे अंदर, व्यक्ति जिन्हां ने रब नू बाणी विचों प्रगट कर लिया, ते बाणी दे विचों रब दे दर्शन कीते, बाणी दा रूप आप हो गए, बाणी दा रूप हो गए। फिर जदों बाणी हिरदे दे अंदर वसी, ओ ब्रह्म दी बाणी है, जो विचार कहंदे हन ओ सच हो जांदा, जो विचार आखदे ने ओ सच हो जांदा। ए ते गल है मनन दी। गुरु साहिब ने फरमान कीता, सतगुर बचन तुम्हारे, हे अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा देव जीओ, तुम्हारे बचन, तुहाडे बचन, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, निर्गुणा नु नितार दिंदे ने, जिन्हां दी तरन दी आस नहीं हुंदी ओ तर जांदे ने। महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, महा पापी महा दुष्ट लोग पुनीत हो जांदे ने। जेड़े नरकां च जा रहे हुंदे ने ना, उन्हां दा जन्म पौं जांदा, जन्म घुम जांदा तेरी बाणी सुनन दे नाल। ते गुरु की बाणी है, गुरु की बाणी, ते गुरु की बाणी रसना विचों निकली हुई बाणी, अकाल की बाणी दा ऐसा जादू है, सप नू वस करन वाले ना, कीलन वाले सप नू बीन वजांदे ने, ते बीन दे अंदर कोई उसका जिहड़ा मंत्र है ना ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਵੀ ਉਸ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡੰਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਡੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ,
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਕੀਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਦਰ ਤੰਬੂਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਨ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ, ਉਥੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਮੰਗਵਾਈ।

तीर चलाया, तीर बड़ी दूर तक गया, चारे दिशा वाल तीर चला के महाराज कह लगे तीर लभ के लियाओ। सारे दे सारे संघ जेड़े तीर लभन वास्ते चले गए, शाम हो गई, वापस आ गए, तीर ना मिले। महाराज सचे पातशाह जीओ आप तीर चलाउंदे सी, असि अद्धे घंटे घंटे च हद तीर लभ के लै आउंदे सी, अज केड़े तीर चलाए ने तुसी वी, अज ते मिले ही नहीं, शामा पै गईयां ने, तीर लभया ही नहीं किते वी, एडी दूर जान वाला तीर किथे है। महाराज असि बड़ी बड़ी कोहां तक तीर लभ आए, ते गरीब नवाज कहन लगे तीर ओही सी, तीर तुहाडे इलाके विच डिगना सी, पर उस दे नाल बन्ने होए हवा पंछी दे जेड़े खंभ सी ना, हुमा पंछी दे खंभ, कई हमायू पंछी कही जांदे ने, हमायू पंछी नहीं हुमा पंछी, हुमा पंछी दे जेड़े खंभ सन ना जेड़े तीर नाल बन दिते, ते ओ जेड़ा पंछी है ना ओ रहंदा परलोक विच सचखंड विच, ओ ओथे दा आदि है, जिथे दा रहन वाला पंछी है ना, जदों तीर चलाया खंभा विच इतनी तसीर भी तीरां नूं तुर अंदर गुरसिख दा निवास होएगा, उथे जाके गुरसिख निवास करेगा, तुर की बाणी आई तन सगली चंत मिटाई, जिवें पंछी दे खंभ तीरां नूं लै गए ने, इस तरह बाणी जपण वाले दा उधार सिद्धा होएगा, ते चला जाएगा ओ उरले पासे किते नहीं खड़ेगा, नॉन स्टॉप जाएगा अकाल पुरख की दरगाह दे अंदर। गरीब नवाज साहब सचे पातशाह महाराज ने फरमाया ब्रह्म दी विचार करो, गीत समझ के इस नू ना मनो, गुरु समझ के इस दा पवित्र

हमारी जेबा एक रुपया हर के गुण अगम अथार हम क्यों कर जमे आनिया हर तुम बड अगम अथार।

कमल गुण गई है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमल गुण कही है जेहबा एक

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भक्त गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्श दाते, जिस पापी को

अगम अगाहा, हम क्यों कर जब इरानिया हर तुम वद अगम अगाहा, हर देहो प्रभु मत उपमा गुर सतगुर के पग पाहा, सत संगत हर मेल प्रभु हम पापी संगत रा, जन नानक तो हर बख्श ले हो हर

0: करसम बेनती कृपा करसम
1: बेनती शरण बेनती बेनती बेनती हर कृपा करसम बेनती
2: निधर रे रे निधर रे।

0: जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस दीवान पग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नकिया चले आईया लख पुना पुरवान लखता बुगर दीर खान से जोग बेबान लख सुरत संगना रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पर पुराण जल करते करना किया लिखिया आम जान

सबना होए दारू सबना होए दारू पाप कटे धोए नानको खाने बेनती खिन सच।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआं जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पईआं। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

0: जे दूजे पासों मंगी है, जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराइए मोह दूजी नाही ठाउ।
1: उतनू चोट जाइए प्रभु।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएन हस्यो लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदियां होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सर्रार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सर्रार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटान वाला, इसम फाइल। ते सर्रार सिर वाहद सर्रार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सर्रार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सर्रार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड़ियाई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी ही राज विलोक तराजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे धारनी ने, तस्लीम करने वाले ने, उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, उना दी ता गल की करनी? उना वल ता है प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है, पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है, जिन्हां विच लचक ना होवे। लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ां गजा दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है, पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखीए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है।

अपनी बिरसा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरसा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा वो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कड़ास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

एतल होती खाक में मारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए।

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत तांब सासा देता बिलमना करियो मीत मैं

लास करे जीवन पर कारण लोचन तछम सूझे कह कबीर सूरे प्राणी कह कबीर सुनोरे प्राणी।